knows nothing about right. Only cares about himself and no one else. His life is most important. Everything surrounded him. Kalopapu, born of sins. Bhojanam Kulapansanam. Bhojanam means the family he is born into. And Kulapansana. Kulapansana means somebody who is a stain on the family. Bhagini Kohantadabhya Khandapani Kechit Grihit. He takes his, in 1 minute he is holding the rope. In the next minute he grabs her hair and he pulls her off and he pulls a sword. Tam Jusup Karmanam Nisham Tripatram Vasudeva Mahava. And he pulls her down when he hears this because he's worried about his survival. So he pulls her down. Vasudeva Cha Uvach Shlakati Puna Shadveda Bhojasham Bhojayashkara, O fame of your race. Sir Katham Bhaginim Hanyat, why are you giving trouble to your sister? Sriya Mahaparvani, did you hear what it said? It didn't say she, it said her child. Her child will become the cause of your destruction. Mrityu Janmatam Bira Dehi Na Sajayate, anything that born has to die. Whatever is born, it must die, O great one. Adhyashyaptanto Mrityu Vai Praninam Devaha. Everybody wants to protect their life. But did you listen? So Vasudev talk and talk and talk. And try to pacify him and try to keep him calm. Ya tumhari chota bahin hai, this is your small sister. Aur abhi balak ko deena wala bab ko dekhkar kahte ki tudki nahi tumhara aage bade hai. What you worried about? It didn't say her, it said her child. It said the child that is born of her. Kurvansh, Raja Parikshit, O savior of your race, Raja Parikshit. ऐसे के वचन सुनकर वासुदेव जी की साम और भेद को समय को भीष्म तक थिंग ही यूज ऑल टाइप्स ऑफ मेथड्स साम एंड भेद टू ट्राई टू गेट हिम टू काम डाउन टू स्टे क्वाइट। तैसे उसे कंस में वसुदेव की एक भी मानो हो वसुदेव जी की समाजा हथली है देन कंस रिलीज एंड से ओके गो। सो व्हेन दिस टुक प्लेस ओम नमो भगवते वासुदेव। वसुदेव जी बोले कि हे स्वामी जो भय आपको चित्त में आकाशवाणी उत्पन्न है आई नो यू डॉट यू आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ व्हाट यू हर्ड फ्रॉम मी हेवनली वॉइस तो किंच मात्र भी मत मानो डोंट वरी क्योंकि देवकी आपके कुछ भय नहीं है यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम अस। भय के आपके दूर के डोंट लेट दैट एंटर योर माइंड एट ऑल ट्राइंग टू कीप देम अलाइव। जो पुत्र की मैं उसके समय आपको संपूर्ण को दूंगा। Every child that is born, I will bring for you. Don't worry. Shukdev ji bole, Rajan, Vasudev ji ke vachan satya maankar Kans apni bahin ko maarne chhod diya hai. When he heard this, he let her go. Ad Vasudev ji prasan, Kans ko badai karke baad, Devaki ke leka apne ghar jayo. And they left and they went home. Sab praniyo ko atma Vasudev Bhagwan hai. Every life in this world is that of Vasudev. Devaki ne samay par ek aatma putra ho, एक कन्या है एक वर्ष अपरंत उपाय है। देवकी हैड 8 सन्स एंड 1 डॉटर। पुत्र हुआ उसके वासुदेव के बड़ा कष्ट है बट इट वाज अ सोर्स ऑफ वरी। सो व्हेन दिस टुक प्लेस एंड ही वेंट होम दे वुड वेट नाउ। कंस टोल्ड हर तुम्हारा आठ पुत्र मेरे मृत्यु निश्चय है। योर 8 सन योर 8 चाइल्ड विल कॉज दिस। बहुत अच्छा है डोंट वरी आई हैव नो चाइल्ड। यहां को वसुदेव पुत्र लेकर सो नारद जी के मा डिसाइन परंतु कंस को वचन कुछ के विश्वास हुए नारद को आ गए देन नारद कम। यू नो यू हैव सम पीपल योर माइंड इज बी स्टिल एंड यू डजंट हैव नो ट्रबल एंड ऑल ऑफ अ सडन दे विल कम एंड टेल यू समथिंग एंड चुक अ लिटिल फायर। मैं कॉल चुक एंड फायर देखो चुक अ लिटिल फायर एंड व्हेन दे चुक दैट फायर They light that fire for you. Man is trouble. You this time nothing wrong with you, and them make you feel something wrong. And them, this is Narad. Narad comes. Narad ji to chale aaye, and he comes. Nand ji adi se loko so gop gwal ke Vasudev ji adi lekar Vishnu Yadav Dev ki adi se ke Yadav. They have so much ladies in all of their Nand family in Braj. All of them belong in the Yadu race. You don't know boy Kans. They go say the 8 child, but what about you thinking one go born and then one go born and one go born? What about three, four born one time?

प्रभुति गण को स्थित उस गर्व देवी की हर्ष when this was done, although Devaki was expecting that. Karami manurata prithvi padmanushiko sthan bhavan sundar sundar mandir banaye ke durga bhadra kali. All of these they will make you. Pradam kahe gaye maha se balbhadra kahega. He will be known as balbhadra, sankarshan. The one who enchants the world. Bachno ko swikar karke prithvi pada karke kaya ki amohini rupaman. मथुरा वासुदेव के घर आए और घर छिपा कर अवाहर रोहिणी के ऊपर लीव नाउ एंड ऑफ कोर्स एज इट इज गर्भे प्रंतो देव के रोहिणी योग त्रय अहो श्री स गर्भे इति पैरो चक्रुषः व्हेन दिस हैपेंड द मोमेंट दैट शी अंडरटूक द ट्रांसफर ऑफ इट एंड शी मूव्ड द सेवंथ चाइल्ड आउट ऑफ द वूम एंड शी प्लेस्ड इट इन द वूम ऑफ रोहिणी

पवन कहने लगे द ब्रीज व्हेन इट ब्लो स्वीट स्वीट स्वीट स्मेलिंग यू लाइक व्हेन यू डू पूजा एंड यू फिनिश पूजा एंड यू पुट इट आउटसाइड द बर्न एंड द ब्रीज पिक अप दैट सेंट एंड दैट समग्री स्टार्ट द बर्न द पार्सर एंड एवरीथिंग दैट यू ऑफर इन द फायर स्टार्ट द बर्न हाउ दैट द स्मेल द पास बाय एंड यू पास बाय हाउस दैट आप पूजा एंड यू स्मेल दैट यू टेल दिस एवरी हाउ पार्सर दे Sometimes when the Baba come to do puja and he never chunky report, you can tell yourself, oh, he had day. Oh, Rupi. Yeah, sometimes I tell Rupi, light up incense, boy, light up incense. You know what, Gandhi? When that thing chunky, it could be good for you, you know. Some of you, but for me, bad. When that purine drop in the oil and you chunky that thing, Bap re bap. Sometimes we light out a wood paka incense and still. So sugandhita pavan ho. Wind smelling like puja. And they begin. And Bhagavan says very beautifully. Swarga mein avatar ko chunda sunne. Shivai ke kansa raksha rup mahatma ko prasan hua hai. And विद्याधर श्रीयों को अप्सरा नृत्य करने लगे किन्नर को गंधर्वा भगवान को यशगान करने लगे ऑल ऑफ द किन्नरस द सेलेस्टियल सिंगर्स दे स्टार्ट टू सिंग सिद्ध चरण स्तुति करने लगे दे स्टार्ट टू चांट प्रेजेस टू द लॉर्ड

0: पुराण दशम स्कंद कंस विज्ञान तृप्त वाले दिन सुन नाम चतुर्थ अध्याय
1: सो फ्रॉम हियर ऑफ कोर्स द डिवाइन लॉर्ड बीइंग बोर्न इनटू द होम ऑफ नंदन यशोदा इंडीड ब्लेस्ड देयर वुड बी ग्रेट फेस्टिविटी दैट विल जॉइन एज द फैमिली परफॉर्म्स पूजा विक्टोरिया एंड दिलीप आर हियर सो सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

खोले, जब कोई साथ नहीं आया तब तेरी मूरत ही रोशनी बनी, तेरा नाम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, बस मुझे अपनी भक्ति में डुबो लो प्रभु।

0: भगवती
1: भगवान ग्रेस ऑफ कोर्स इज वेरी ग्रेट दे बॉडी जी आत्मा द सोल दैट इज इनसाइड ऑफ अस यर्न्स फॉर द टच ऑफ द लॉर्ड There's an exit of the Bhagavad Gita that is called Brahma Vrindavan. Brahma Vrindavan, said the Lord, after when he became Cowherd, in a beautiful bhajan that we sing.

0: इसी नाम से
1: निखरी निखरी
2: मीरा की श्रद्धा भक्ति.
1: This is why Mazumdar is working.